0: روزی. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया. उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की. क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई. सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए. भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की. इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई. दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया. भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे. प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है. गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी. राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की.
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी. परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए. और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी.
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है. ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है. नई दरें कल से लागू हो गई. अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है. अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है. चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है. रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है. ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी. रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी. इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी. केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है. इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे. गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे. पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है. आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे. डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.

निषाद राज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री रामचंद्र ने अपने घर लौट जाने को सहमत किया तथा स्वयं सीता और लक्ष्मण समेत वन की राह ली। राह में मिलने वाले वनवासियों को उन्हें तापस वेश में देखकर अत्यधिक चिंता होती है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में ऐसा अनुराग उमड़ पड़ता है जिसके वशीभूत वे उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। वट वृक्ष की शीतल छांह देख कोई नरम घास और पत्ते बिछाकर वहां उनसे थोड़ी देर विश्राम कर लेने को कहता है, तो कोई कलश भर पानी लाकर प्रभु से आचमन कर लेने का आग्रह करता है। ऋषि कुमारों के वेश में श्री राम लक्ष्मण का अनुपम रूप देख गांव के स्त्री पुरुष इस प्रकार स्तब्ध रह जाते हैं जैसे दीपक का प्रकाश देख हिरणों का जोड़ा निस्तब्ध हो जाता है। गांव की स्त्रियां अपनी अल्प बुद्धि की विवशता बताकर सीता जी से दोनों कुमारों का परिचय जानना चाहती हैं।

0: जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्यरूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्यसचिवरूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतन्त्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17तमस्य विदेशमन्त्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉ जयशंकरः अवदत् यत् ते हिन्द प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनबीनः ब्राजील, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्। तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल दृढ़ विश्वास प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान्। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा। अत्यारे स्टूडियोनी घड़ियालमां बराबर 7 वाग्या छे। समय थयो छे कार्यक्रम सदाबहार गीतोनो। कार्यक्रमनी शरूआतमां सांभळीए फिल्म घरमांथी लीधेला आ गीतने। स्वर आप्यो छे किशोर कुमार अने लता मंगेशकरे। गुलजारना शब्दों ने संगीत में ढाळ्यू छे आर डी बर्मने।

0: આકાશવાણીનું અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્રનું પ્રસારણ આપ સાંભળી રહ્યા છો. અત્યારે બરાબર 8 વાગે હિન્દીમાં સમાચાર અને ત્યારબાદ 8:15 અંગ્રેજીમાં સમાચાર અમે દિલ્હી કેન્દ્રથી રિલે કરીશું.
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया. मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा. मुख्य समाचार. केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया. सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा. CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी. मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया. नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया. और IPL क्रिकेट में रॉयल

0: चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ सत्र में विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और

0: कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य

0: देश उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi.

0: संग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से

0: किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: हाँ विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
0: जी
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
0: जी श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुंचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से,
0: जी
1: जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था।
0: जी
1: बाद में यह शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
0: जी रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3,000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी
0: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है,
1: जैसे
0: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी
0: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
0: जी
1: अविमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास, जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे,
0: जी
1: विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
0: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो यह है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहां तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं।
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।

0: लेकिन बेटा क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
1: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
0: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
1: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
0: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
1: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
0: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
1: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
0: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
0: मश्क।
3: होशियार,
0: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
0: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
0: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।

0: साथियों, मैं हूँ मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
1: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
0: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
1: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए, हो नहीं सकता।
0: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
2: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
3: क्या बात है,
2: सुनकर ही जोश आ गया।
3: हाँ
2: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
3: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों

0: और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे।

0: दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा, 3:24 हो गए थे, 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था, बस फिर क्या था। उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
1: हमला करो, दुर्गा माता की जय,
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। पॉइंट 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
2: कैप्टन विक्रम, पॉइंट 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
3: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ, ये दिल मांगे मोर।
2: ये दिल मांगे मोर, हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
3: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था, लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यहीं पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: सामजी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नहीं, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें?

0: नहीं, नहीं,
1: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे करने को है। अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ 8 जून 1936 से ये लगातार हमें शिक्षित करने का कार्य कर रहा है, हमें सूचना दे रहा है और साथ ही हमारा मनोरंजन भी कर रहा है। देश की संस्कृति को, संगीत को घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है आकाशवाणी। इन 90 सालों में कई दिग्गजों ने अपनी आवाज, अपनी कलम, अपनी रचनात्मकता से आकाशवाणी का सफर यादगार बनाया है। तो आइए, आज के हिंदी जगत कार्यक्रम में आपको मिलवाते हैं ऐसे ही दो साहित्यकारों से, जिनका जुड़ाव बचपन से ही आकाशवाणी से रहा। आपने कई कार्यक्रम किया आकाशवाणी के साथ और आज भी हमारे स्टूडियो में आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। आप हैं डॉक्टर प्रणव भारती, जो गुजरात साहित्य अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं, और साथ में हैं डॉक्टर अंजना संधीर, जिन्हें गुजरात साहित्य अकादमी से गुजरात गौरव प्राप्त है और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से विदेश हिंदी प्रचार सेवा सम्मान प्राप्त है। आपने हिंदी गानों द्वारा विदेश में हिंदी पढ़ाने का कार्य किया और हिंदी के अलावा उर्दू में भी ये निपुण हैं। तो आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पर ये परिचर्चा। डॉक्टर प्रणव भारती और डॉक्टर अंजना संधीर से बातचीत कर रही हैं दीपशिखा दुर्गापाल।
1: हेलो अंजना।
2: अरे
1: अरे बाबा, मुझे क्या पता था तुम यहाँ पे आ रही हो।
2: अरे मुझे मालूम था, लेकिन आप आने वाली हो।
1: सरप्राइज। सरप्राइज। अरे भाई, तुम्हारा तो बहुत बड़ा, हमेशा सरप्राइज ही देती हो तुम।
3: देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप दोनों की ये मीठी बातचीत सुन रही हूँ, और मेरे साथ साथ जो हमारे श्रोता हैं वो भी इसका लाभ लेंगे, क्योंकि आप दोनों, डॉक्टर अंजना संधीर, डॉक्टर प्रणव भारती, आप दोनों हिंदी साहित्य के तो माहिर हैं ही, लेकिन साथ ही साथ आप आकाशवाणी से बहुत वर्षों से जुड़े रहे हैं, वार्ताकार के रूप में, प्रेजेंटर के रूप में, और उससे भी ज्यादा एक लिसनर के रूप में, श्रोता के रूप में। तो आज हमें तो ये लाभ मिलना चाहिए आप दोनों की यहाँ पर उपस्थिति का, कि आप आकाशवाणी के जो 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं उस पर आपके क्या अनुभव रहे हैं और वो हमारे साथ साझा करें, तो बस बताइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आकाशवाणी तो जैसे हमारी सांसों में है दीपशिखा जी। मैं अगर कहूं कि यूं मुस्कुराते रहे तो बात क्या, और इससे बड़ा कोई और साथ क्या, और एक सच्चा साथी मिल जाए अगर भाई, तो जिंदगी में आकाशवाणी से बड़ी और बात क्या। तो आकाशवाणी तो हमारे साथ जैसे चलते रहे या हम आकाशवाणी के साथ चलते रहे, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं तो, अंजना मेरे से काफी छोटी हूँ तुम उम्र में, लेकिन ये जरूर है कि मैं जब से मैं विद्यापीठ में पीएचडी कर रही थी तब से मेरी यहाँ पे एंट्री शुरू हो गई थी, और इसका कारण था कि जब मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी तो आकाशवाणी का और हमारा विद्यापीठ का एक ही बैंक था, तो वहां से शुरुआत हुई शुरू, और साधना जी से परिचय मेरा शुरू हुआ,
3: वो तत्कालीन केंद्र निदेशक आकाशवाणी।
2: लेकिन लेकिन मैं बीच में रोकती हूँ आपको, मैं तो बहुत छोटी थी और मेरे तो हमारे शमशी सर, उन्होंने मुझे कहा कि यूथ प्रोग्राम हो रहा है और उसमें आकाशवाणी की जो युवावाणी प्रोग्राम है, और उसमें हमारे कॉलेज का प्रोग्राम है, तुम तो कविताएं लिखती हो, शायरा हो, एक दो मिनट सिर्फ, हाँ दो मिनट, हाँ दो मिनट मेरे लिए, वो दो मिनट रेडियो, मैंने दुनिया भर के लोगों को बताया कि मैं तो भैया आज रेडियो पे आने वाली हूँ, रेडियो पे आने वाली हूँ, मुझे
3: हम सोचो रेडियो का
2: आकाशवाणी था, और आकाशवाणी में मतलब मैं आ रही हूँ, इतने लोगों को बताया, उसके बाद तो आकाशवाणी हमारा घर हो गया। एक टैलेंट इवेंटिंग में मुझे बंसाली सर ने, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन विजय बंसाली सर, वो युवावाणी के डायरेक्टर थे, उन्होंने हमारे सर को पूछा ये लड़की कौन है, बड़ा अच्छा हिंदी बोल रही है और क्या टैलेंट इवनिंग में अनाउंस कर रही है, वो मुझे मिले, मुझे बोलते हैं तुमको युवावाणी में आना है, मैंने कहा हाँ सर जरूर क्यों नहीं, बोले लेकिन गुजराती में बोलवानू छे, मैंने कहा सर गुजराती में, मेरे को गुजराती का एबीसी नहीं आता है, गुजराती का एबीसी नहीं आता है, बोले नहीं पण बोलवानू तो छे, जो तारी आवाज केवी सरस छे, मैंने कहा सर नहीं मुझे नहीं आना है, मैंने मना किया, इतना मना किया, मगर वो बोले नहीं आना ही है, फिर तो क्या किया, पूरा स्क्रिप्ट को वो ट्रांसलेशन और ये और फिर लिपि यंत्रण, उनको मैंने कहा सर लोग कोसेंगे आपको, कैसे कैसे आर्टिस्टों को आप ले आते हो, उनको गुजराती नहीं आती है, बोले ए तुम्हारी जवाबदारी नहीं।
3: देखिए, उनको पता था ना कि आपके अंदर वो प्रतिभा है कि आप कर पाएंगे, भले वो आपकी पहली भाषा नहीं थी।
1: बिल्कुल। हाँ।

0: तो फिर भाई हमने तो मेहनत करी और उन्होंने प्रोग्राम किया। उसके बाद 1980 के करीब, यानी मेरा 79 में पहला प्रोग्राम 2 मिनट वाला,
1: जी
0: उसके बाद युवावाणी में आए, उसके बाद से तो बस समझ
1: बस आता
0: लीजिए।
1: लग गया। मुझे तो उस
0: और
1: समय याद है जब
0: जी
1: हम बहुत छोटे बच्चे थे और मैं डीपीएस में दिल्ली में पढ़ती थी उस समय, और
0: जी
1: हमारे एक मर्फी का रेडियो आया छोटा सा, और पूरे मोहल्ले के लोग उसमें न्यूज सुनने के लिए आया
0: हाँ,
1: करते थे।
0: तब वही सुना था।
1: हाँ, तो वो उन दिनों की बात, तब से हम जो रेडियो से जुड़े। फिर मैं दिल्ली के रेडियो पे गई और
0: जी
1: दिल्ली के रेडियो,
0: आकाशवाणी दिल्ली,
1: आकाशवाणी दिल्ली के रेडियो पे गई बच्चों के प्रोग्राम में, किसी में कोई मुझे लेके गया वहाँ पे, मैं तो छोटी थी।
2: मतलब ये कितने साल पुरानी बात
1: हाँ,
2: होगी ना मैडम,
1: अब ऑलमोस्ट मत पूछो।
0: नहीं, ऑलमोस्ट मुझे, मैं साधना भट्टी ने मेरी सीडी का रिकॉर्डिंग था उसके पहले
1: हाँ,
0: जो लाइनें कही ये ना बस
1: हाँ,
0: आप तो हाजिर थी।
1: साधना बहन ने शारदा वंदना की थी
0: हाँ,
1: और साथ में उन्होंने कुछ
0: हाँ,
1: बोला,
0: उन्होंने मेरे लिए लिखा कि सारी दुनिया अंजना को बहुत बड़ी कवित्री और ये और वो जानती है, मैं उस अंजना को जानती हूँ जो हमारे स्टूडियो में दो चोटियां करके आया करती थी।
1: वो तो अंजना मैं भी जानती हूँ तुम्हें, आज भी
0: रेडियो का नाम आता है तो सारा छोड़ छाड़ के भी हम कुछ भी करके ट्राई टू मैनेज के बिना।
2: प्रणव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तो बहुत सारे रेडियो प्रोग्राम्स के जरिए भी जुड़ी रही हैं, मतलब खुद सीरियल भी बनाए हैं आपने, तो तब क्या अनुभव था कुछ हमें बताइए।
1: एक्चुअली मुझे लगता है मेरा साधना बहन के साथ में किस तरह से मेरी पटरी बैठने शुरू हुई है कहूंगी, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं पीएचडी कर रही थी तो मैं वहां मिलती थी, बैंक में मिलती थी सब लोगों से।
2: अच्छा,
1: फिर
2: अच्छा।
1: मनोज जी भी आ गए, मदन मोहन मनोज जी, फिर वो वहां पे आने लगे और उन्होंने एक नव परिमल करके एक संस्था उन्होंने शुरू करी, और उसके बाद फिर वो हर बार फोन कर देते थे कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको आना है। अब हम तो गृहस्थी लोग थे भाई, तो बच्चों को छोड़ के हर बार आना पॉसिबल नहीं था, तो वो कई बार नाराज हो जाते थे मेरे से कि मैं खुद फोन करता हूँ फिर भी आप नहीं आती है। तो एक आध बार मेरी उनसे हल्की सी झड़प भी हुई इस बारे में, और उनका ये था कि हर शनिवार को ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो जब वो यहाँ से गए थे तो सूरज प्रकाश को उसका अध्यक्ष बना के गए थे, और उनके समय मैंने तो बहुत सारे यहाँ पे कवि सम्मेलन अटेंड करे।
2: हाँ।
1: और साधना जी की अगर मैं बात कहूँ तो साधना जी के साथ जब मैंने काम किया तो उन्होंने मुझे बहुत अलग अलग तरह के काम दिए। एक मुझे याद आ रहा है, और याद आ रहा है कि एक एक्सीडेंट के ऊपर कोई प्रोग्राम बना था। पहले ऐसी बात थी ना कि एक्सीडेंट हो जाए तो पहले पुलिस में कवर करो,
2: हाँ,
1: बाद में वो करना चाहिए, तो
2: हाँ,
1: उसके ऊपर मैंने कुछ सीरीज लिखी थी, मुझे याद नहीं है पूरी तरह से अब, तो उस समय आकाशवाणी के लिए मैंने लिखी थी वो सीरीज।
2: दूसरे ज्ञानवर्धक
0: कार्यक्रम के प्रोग्राम थे, मुझे याद है कि महिला पत्रिका थी उसमें सड़िया पाछड़नी जिंदगी, यानी ये जो महिलाएं जेल में होती हैं और जेल में उनका जीवन कैसा जाता है और जेल के कैदियों के बारे में, तो उस समय आई थिंक डॉक्टर बिंदु त्रिवेदी जी थे उस प्रोग्राम में।
2: हाँ,
0: तो महिला पत्रिका के लिए मैं बड़ौदा की जेल में गई, और वहाँ के जितने सारे बड़े बड़े लोग
2: थे,
0: सिखों के पीछे की जिंदगी, और वो बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था। उसके बाद में कोई भी सेंसिटिव प्रोग्राम हुआ, मेरा सौभाग्य रहा कि मनोज जी ने हमेशा मुझे सुना कि नहीं आप चाहिए,
1: हमेशा याद करते
0: और उन्होंने, और उर्दू मजलिस चलती थी उसका एक बहुत बढ़िया आपको उदाहरण दिखाता हूँ कि भी हमारे यहाँ जब सिलेक्शन हुआ उसमें 103 लोगों में से हम 3 लोग चुने गए थे और एक मैं थी, ठीक है। तो वो मेरे ऊपर तो बहुत झगड़ा हुआ, इनको क्यों लिया गया है, ऐसा वो तो लड़ाई हुई जो भी। सिंधी के जो प्रोड्यूसर थे ककवानी जी, उन्होंने
1: के ऊपर बहुत
0: उन्होंने कहा कि नहीं ये लड़की को तो लेना ही है, ये बात में झगड़ा मुझे बाद में बढ़ा। उसमें एक बेगम का प्रोग्राम आता था, रहीम चाचा सीरियल था, वो रहीम चाचा सीरियल में ऐसा हुआ कि एक बार ना नारी मुक्ति का आंदोलन चल रहा था, और उस वक्त ना मेरे साथ में हसीना कादरी जी थी,
1: हसीना कादरी
0: उस एपिसोड में,
2: दरअसल मजलिस की शुरुआत ही हसीना कादरी के
1: हुई
2: थी,
0: और उसमें ना जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो अनवर जोसेफ थे, ठीक है, उन्होंने लिखा। मैंने कहा हसीना बहन ये क्या है, ये इतनी सारी गालियां बेगम तो नहीं खाने वाली है। तो मैंने ना हसनैन सिद्दीकी जो प्रोड्यूसर थे उर्दू के, मैंने कहा सिद्दीकी साहब ये क्या है, इतनी सारी गालियां लिखी हुई है और हम लोग क्या प्रचार कर रहे हैं रेडियो की तरफ से। कि बोले अरे अमा अंजना जी छोड़िए आप, औरतों के साथ तो क्या क्या होता है घरों में, मतलब घरों में होता है, उसको हम रेडियो से भी ये बताएंगे, ये प्रचार माध्यम है,
1: मतलब तो, हम उसको किस तरह से बेटर बनाने की जगह हम उसको ऐसा रखेंगे।
0: मैं तो नहीं, मैं तो नहीं आज रिकॉर्डिंग नहीं करूंगी। अरे बोले कहाँ, अरे आज देखिए, आज तो हमारे पास इतने साधन है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, फटाफट फटाफट सब
1: पता भी नहीं चलता।
0: उस समय तो बड़े बड़े वो टेप में करते थे,
2: चक्के होते थे,
0: चक्के होते थे,
2: स्कूल टेप में,
0: हाँ हाँ, वो इतना, उसके बाद में ओवर वॉइसिंग ये वो, मैं समझती थी।
2: लेकिन
0: हसीना जी वो बोले, नहीं अंजना साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो वो मुझे कहने लगी, चलो चलो अपने कैंटीन में। तो यहाँ कैंटीन हमारी उधर हुआ करती थी,
1: मैंने
0: उसको बोला,
1: बहुत
0: कह दिया, प्रजापति था ना वो रिकॉर्डिस्ट था, बोले अंजना बहन मारे शू।

0: मैं कहा तुम्हारी बहस मानू, अब बेगम अगर नहीं है तो सारे को स्टार बैठ गए।
1: मतलब देखिए फेमिनिज्म के लिए भी आकाशवाणी ने, आकाशवाणी ने आपकी जिंदगी में और आपने भी आकाशवाणी के कार्यक्रमों के माध्यम से फेमिनिज्म को और नारीवाद को
0: आकाशवाणी। इसमें सुनिए, इसमें क्या हुआ, मैं कहा राइटर को बुलाओ कि ये डायलॉग चेंज करो। अरे बोले अंजना साहिबा कब ये होगा, कब रिकॉर्डिंग होगी, कल संडे है, संडे में लोग सुनते हैं आपका सीरियल ये। मैंने कहा भले सुनते हैं नहीं, लेकिन
2: साधना बहन भी तुम्हारे साथ में इतने ही जुड़ी हुई थी। मुझे एक बात याद आती है, मैं उनकी बात याद बताती हूँ कि हम लोग कविता करते थे, ऊपर जाते थे उनके पास में बैठती थी, तो कोई समय ऐसा नहीं होगा कि हम दो तीन घंटे से
1: जी, मुझे पहले याद है, मेरे मैं जब आकाशवाणी अहमदाबाद में नई नई आई थी तब से मैं आपको देखती थी।
2: एक दिन मैंने देखा वो अपने ड्रॉर में कुछ ऐसे हल्के से कुछ रख रही है अंदर को, तो मैंने कहा साधना बहन दिखाओ ये क्या है, तो बोलने की अरे नहीं ये तो प्रणव जी ऐसे ही कहाँ ऐसे ही। तो वो मैंने उसे जबरदस्त से कागज निकलवाए, तो वो नहीं चाह रही थी मुझे दिखाना, तो मैंने कहा नहीं निकालो। फिर मैंने उनकी वो निकलवाए तो देखा उन्होंने कविताएं लिखी हुई थी, छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों टुकड़ों। बोले ये तो कोई ऐसी कविता है कि छपे, मैंने कहा मैं छपाऊंगी ना आपकी कविता, आप चिंता क्यों कर रही है। फिर उसके बाद में हमने उसका पूरा मैंने तैयार की, उसकी पुस्तक तैयार की और गुजरात अकेडमी से वो उनकी पुस्तक छपी। फिर वो कहने लगी अच्छा हम इसका वो क्या रखेंगे शीर्षक, तो मैंने कहा आप चुपके चुपके काम कर रही थी ना, तो इसका शीर्षक रखते हैं चुपके से। तो उनकी पहली पुस्तक जो छपी वो यहाँ के अकेडमी से, उनकी पहली पुस्तक थी चुपके से और वो इस तरह से निकली।
1: अच्छा डॉक्टर प्रणव भारती, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप रेडियो सीरियल्स के निर्माण में भी जुड़ी रही, आपने उनकी पटकथा लिखी और डायलॉग संवाद वगैरह सब लिखे, तो कुछ आपके वो अनुभव बताइए। जब मैं मुझे याद है मैं आई थी तब पंडित ब्रिजभूषण काबरा के साथ आप संगीत सरिता पर काम कर रही थी
2: और वो काफी मेरे ख्याल से काफी लंबा वो था सीरीज था, मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय। और एक पांडे जी हुआ करते थे एक, तो उनके एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं अगर आप कहें तो जैसे ही एंटर होती थी ना वो बहुत अच्छी स्केचिंग करते थे, तो फोटो बनाने लगते थे वो मेरा, और गर्दन तक आते कहते थे साधना बहन अब क्या करूं, ये है नहीं इनके गर्दन तो मैं क्या बनाऊं। और हम लोग इतने जोर से बुक्का फाड़ के सारे हंसते थे, तो साधना जी मुझसे कहती थी कि अरे प्रणव जी अब तो संभल जाइए थोड़ी, आपके तो फोटो भी नहीं बन रही है, स्केचिंग भी नहीं हो रही है।
1: अच्छा
2: तो बड़े इंटरेस्टिंग
1: नहीं, ये तो आपके बहुत रोचक किस्से रहे हैं आकाशवाणी के साथ के, और इतना लंबा साथ रहा है आपका आकाशवाणी अहमदाबाद को 77 वर्ष हो गए हैं और पूरे आकाशवाणी को 90 वर्ष बस पूरे होने ही जा रहे हैं। तो डॉक्टर अंजना संधीर आप विदेश भी गई, रेडियो आपके साथ मतलब आकाशवाणी आपके साथ रही,
0: आकाशवाणी मेरे साथ हमेशा रहा। मैं 90 समझिए ना 80 से लेकर 95 तक
1: जी
0: ये रेडियो मेरा दूसरा घर था, यानी अहमदाबाद इंडिया में कह लीजिए, यहाँ से विविध भारती के प्रोग्राम भी यहीं से रिकॉर्ड होते थे। और मुझे खुशी है कि मैंने जयमाला प्रोग्राम फौजी भाई के लिए
1: जो
0: पेश
1: अभी
0: किया,
1: भी चलता है जयमाला पर आता है,
0: तो मुझे वो पेश करने का मौका मिला। मतलब मैं खुद फौजी की बेटी हूँ, तो वो एक प्रोग्राम को कैसे मैंने किया और उनके लिए स्पेशल हमने गाने लगाए, और इसी तरह से दूसरे मिलन यामिनी और दूसरे गीतों भरी कहानियां मैंने बहुत सारी लिखी रेडियो के लिए, और कुछ जिंगल्स में भी मैंने काम किया, बहुत तरह के काम रेडियो के लिए। और हमारा चलते रहा, मैं मेरी अपनी कविताएं पढ़ने भी आती थी, मैं रेडियो की एडवाइजरी बोर्ड में 3 साल की मेंबर हूँ
1: जी,
0: और हमने बहुत तरह के प्रोग्राम चेंज किए, नए बनाए लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार कि भाई हमको क्या क्या करना चाहिए, वो सारा को वो चेंज हुआ। और मैं एक्रेडिटेड कवित्री हूँ रेडियो की।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: और मेरी कविताएं मेरे बाद में अमेरिका चले गई, उसके बाद में भी यहाँ पर बहुत सारे लोग गाते रहे,
2: बहुत कार्यक्रम बहुत होते रहे मनोज जी के समय में काफी कार्यक्रम।
0: मुझे खासकर प्रमोद जी आपको याद होगा कि मनोज जी के टाइम में वो लोक कलाकारों को बहुत लाए,
2: लोक कलाकारों को,
0: और एक तो ये
2: स्टेज भी याद है जहाँ पे हम लोग बैठ के कविताएं किया करते थे और लोक कलाकारों को, बल्कि
1: कॉन्सर्ट होते थे,
2: कॉन्सर्ट्स होते थे
0: उसमें।
2: और
0: पहली बार ये यू नो पंडवानी की गायिका जो है
2: तीजन भाई
0: पहली बार आकाशवाणी की वजह से अहमदाबाद आई।
1: अरे वाह।
0: और उसने जो गाया है माय गॉड, लोग तो ऐसे मेस्मराइज हो गए कि पूछो मत। उसी में अनिल रस्तोगी अभी उन्होंने 30-35 साल के बाद मुझे कहा कि अंजना जी मैं बात कर सकता हूँ आपसे, अंजना जी बोल रही है, मैं हाँ बोलिए बोलिए, बोले बोले अनिल रस्तोगी बोल रहा हूँ, मैंने ला मैंने पहचाना नहीं आपको, अरे आपकी वजह से देख लीजिए कालिदास अवार्ड मिल रहा है मुझे आकाशवाणी के प्रोग्राम में, आपने आर्टिकल लिखा था और हमारी पुत्रवधू जो है गुजरात में है, तो मैंने उनको बोला कि ये आर्टिकल का ट्रांसलेशन करो, तो तो आकाशवाणी से इतने बड़े बड़े कलाकार मुझे मिले। एक और बात कि जब पंजाब प्रोग्राम चल रही थी, 84 की बात है शायद, ये जलंधर रेडियो के लिए एक सीरीज दी गई थी अहमदाबाद रेडियो को।
1: अच्छा।
0: और उसमें उन्होंने कहा कि गुजरात से बाहर जो पंजाबी लोग हैं

0: उन्होंने गुजरात के लिए या देश के लिए क्या काम किया, उनके इंटरव्यू लेके आओ। तो उसमें मेरे साथ में उस जमाने के मेयर थे, जो उनके पीए थे वो पंजाबी थे, उनका
1: अच्छा
0: इंटरव्यू लिया आकाशवाणी में। फिर कर्नल गुरदयाल सिंह जी थे, उसमें अहमदाबाद में कर्फ्यू लगा हुआ था,
1: अच्छा
0: तो साधना जी ने मुझे कहा कि कर्नल साहब भी आने वाले, और मैं यहाँ आकाशवाणी में इंटरव्यू ले रहे थे, वो सीधे अंदर आ गए। मैंने, अरे आप अंदर कैसे आ गए, आपको किसने अंदर आने दिया? अब मुझे नहीं मालूम कि वही है, तो वो तो अब गुस्से हो गए नेचुरली, आर्मी ऑफिसर इतना
1: जी
0: बड़ा,
1: जी
0: तो वो चले गए बाहर। मैं कहा अभी आप बाहर बैठिए, मैं जब आपको बुलाऊंगी ना तभी आप आइएगा, तो वो तो गुस्से में चले गए। उसने बोला नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं इंटरव्यू देने वाला हूँ। बोला अरे रुकिए रुकिए, अभी साधना जी ने उनको बोला, अरे अरे आप डांट चले गए ना इसीलिए उसने आपको। बोले नहीं, उसकी हिम्मत, मैं तो वापस निकाल देंगे यहाँ से।
1: ओ,
0: तो वो तो बहुत गर्म, फिर उन्होंने उनको ले गई वहां पर, उन्हें चाय कॉफी पिलाई,
1: मुझे
0: उसके
1: भी एक
0: बाद
1: चीज, तुम्हारी ये बात सुन के
0: में
1: मुझे एक चीज याद आ रही है, मुझे बाल कवि बैरागी जी याद आ रहे हैं
0: अच्छा
1: सर।
0: अच्छा बताइए
1: तो
0: बताइए।
1: बाल कवि बैरागी जी से कुछ मेरा, जब मैं कॉलेज में थी तब से मेरा संबंध रहा,
0: हाँ
1: और वो हमेशा जब यहाँ एयरपोर्ट पे होते या स्टेशन पे होते बोलते प्रणव मैं आ रहा हूँ, या तो आकाशवाणी में चलो या तो तुम वहां चलो दूरदर्शन में।
0: मतलब देखिए, दो अच्छे साहित्यकारों का मिलन स्थल
1: हाँ
0: आकाशवाणी होता है।
1: आकाशवाणी,
0: आकाशवाणी
1: यही
0: है।
1: हाँ हाँ तो
0: ओके मैं,
1: उन्होंने एक्चुअली ये अपना थी ना बहन, कादरी बहन,
0: हाँ हसीना
1: वो
0: कादरी,
1: हसीना
0: कादरी
1: कादरी
0: जी
1: बाद में वहां चली गई थी, दूरदर्शन
0: दूरदर्शन
1: चली गई
0: में
1: थी,
0: चले गए
1: तो
0: थे।
1: उनसे वहां भी संबंध ऐसे ही रहे जितने यहाँ पर है। और
0: हाँ
1: अगर हम ड्रामे के हिसाब से अगर हम डॉक्टर नवानी को ना याद करें तो ये नहीं,
0: हाँ
1: उनको तो उनके लिए प्रार्थना करना बहुत
0: अरे
1: मेरे लिए तो,
0: जी
1: क्योंकि हम लोगों ने
0: हाँ,
1: बहुत ड्रामे
0: बहुत
1: किए
0: सारे
1: यहाँ
0: ड्रामे हैं।
1: पे स्टेज पे, मतलब उन्होंने संवाद हमसे बुलवाए और इतनी सहज रूप से उन्होंने बुलवा दिया
0: नवानी
1: कि जब
0: जी
1: नवानी जी गए
0: बहुत
1: तो मतलब
0: बहुत
1: अप्रत्याशित था, बहुत
0: आकाशवाणी की,
1: अप्रत्याशित, बहुत
0: आकाशवाणी
1: छोटे।
0: का एक दूसरा रूप मैं आपको
1: हाँ
0: बताऊं कि आकाशवाणी ने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं किया है,
1: हाँ
0: उसने एजुकेशन का भी प्रोग्राम किया
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल
0: उसने
1: हाँ
0: पब्लिक को भी जोड़ा है। सिद्धपुर में उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था, इतनी बारिश हो रही थी, तो रेडियो ने ये पहल की कि वहां पर हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए उसमें एक परिवार के लड़के को मार दिया गया था,
1: जी
0: और वो बोल रहे थे खून का बदला खून। तो
1: जी
0: उस सेंसिटिव जो कवरेज थी उसके लिए मुझे चुना गया था, मैं यहां से गई, नवानी मेरे साथ में थे,
1: हाँ
0: और उस समय अपनी हेमलता जी मेरे साथ
1: हेमलता
0: में,
1: सोलंकी,
0: सोलंकी,
1: हेमलता सोलंकी
0: हेमलता
1: जी, वो
0: सोलंकी जी,
1: असिस्टेंट डायरेक्टर
0: हाँ
1: हो गए
0: उन्होंने,
1: थे
0: हाँ
1: यहाँ से
0: हाँ उन्होंने
1: सेवानिवृत्त
0: सारे
1: होके।
0: मेरे बहुत सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड किए, और वो उन्होंने मुझे कहा मेरे को ना आपसे बहुत जलन होती थी पर आज आपने जो काम किया ना, उसमें ये नवानी जी मेरे साथ में थे, हम लोग
1: हाँ
0: जो गाड़ी में ले गए हैं यहाँ से सीधे वहां गए,
1: वैसे
0: रुके नहीं, और उन्होंने जो आमने सामने थे उसमें जो लड़के की माँ को बच्चा था ना जिसका मरा था, उसने कहा कि आप मेरे बेटे को वापस ला दो और फिर तुम मार डालो इनके लड़के को भी, ये निर्णय था कि इसको बताया इतना सेंसिटिव ढंग से, पुलिस को लेकर गए हम, लेकिन रेडियो का ये काम, रेडियो ने ये बताया कि समाज में क्या हो रहा है। और
1: जी
0: उस समय नवानी जी के साथ में हम वापस आए, मतलब आने के बाद ना मुझे हेमलता बोलती है कि अंजना जी मैं ना अभी तक आपसे बहुत जलती थी कि हर काम के लिए इनको ही क्यों बुलाया जाता है, आज मैं आपकी फैन हो गई हूँ और
1: जी
0: मैं पब्लिकली कह दूंगी किसी दिन कि आपको क्यों बुलाया जाता है।
1: नहीं सही बात है बिल्कुल,
0: समझे?
1: आपके अंतर में जितनी चीजें होती हैं वो सामने वाला तो जज कर ही लेता है ना। मुझे
0: जी
1: साधना बहन जो मिली जैसे मिली, या डॉक्टर
0: जी
1: नवानी मिले, या
0: जी
1: मनोज जी मिले, जो भी लोग मतलब मेरे से
0: जी
1: मिले, वो क्यों मुझसे इम्प्रेस हुए मैं नहीं जानती,
0: हाँ
1: लेकिन
0: वो
1: मैं ये जरूर जानती हूँ कि मैं उनके साथ में हमेशा उनके साथ जुड़ी रही, और
0: जी
1: इस आकाशवाणी की वजह से ही हम लोग बहुत बार बार बार बार मिलते रहे, हम ड्रामे करते रहे, स्क्रिप्ट्स लिखते रहे।
0: हाँ, मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि आकाशवाणी के जो भी प्रोड्यूसर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, मैं हूं एक प्रोड्यूसर, तो हम लोगों का एक ये होता है कि जिसके अंदर प्रतिभा है हम
1: हाँ
0: उसे और उसे बढ़ावा दें, ताकि
1: बिल्कुल,
0: हमारे जो श्रोता हैं उन तक एक उच्च गुणवत्ता का कार्यक्रम
1: ये तो मुझे,
0: पहुंचे।
1: ये आप लोग जिस जिस ग्रुप के हो, एज ग्रुप के हो,
0: हाँ
1: और मैं जिस एज ग्रुप की हूँ, और
0: जी
1: मुझे अब लोग ढूंढ ढूंढ के बुला रहे
0: जरूर
1: हैं, दूसरी
0: बुलाते
1: जगह
0: हैं,
1: से भी बुला
0: बिल्कुल
1: रहे हैं
0: बुलाते
1: इस
0: हैं
1: उम्र में कि हाँ प्रणव भारती अभी काम कर रही हैं, इसका
0: जी
1: मतलब है प्रणव भारती ठीक है। तो
0: हाँ
1: मतलब ठीक है थोड़ी सी तकलीफें हैं, ऐसी बात नहीं
0: हाँ
1: है, लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि मस्तिष्क में बहुत कुछ भरा हुआ है, तो लगातार लिखना
0: बहुत
1: है,
0: सालों
1: लगातार
0: बाद
1: करना
0: आपको
1: होगा।
0: आकाशवाणी में मैंने ही बुलाया
1: बिल्कुल
0: था।
1: बिल्कुल, मैं तो यहाँ
0: यस
1: ही, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे दीपशिखा
0: हमने
1: जी उस
0: कितना
1: दिन।
0: कुछ, अभी ये
1: हाँ
0: वर्ल्ड हेरिटेज
1: क्योंकि
0: मिला
1: हाँ
0: अहमदाबाद
1: जी
0: को,
1: सच में
0: 2015 की बात है कि मुझे ढूंढा गया, त्रिलोक जी ने फोन किया,
1: त्रिलोक संघाणी
0: हाँ संघाणी जी ने, और कहा कि अंजना जी आपको मालूम है कि एएमसी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें हमें विश्व धरोहर यूनेस्को का
1: हाँ विश्व
0: अहमदाबाद,
1: धरोहर शहर
0: हाँ अहमदाबाद को दिया गया है, और हम चाहते हैं कि आपसे बढ़िया कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं है और बोलने वाला नहीं है। लेकिन मैंने स्क्रिप्ट लिखी, फिर मैंने अहमदाबाद जो है ना, अहमदाबाद को लड़का बनाया और
1: अच्छा
0: साबरमती को

0: लड़की बनाया और इस तरह से स्क्रिप्ट लिखी और वो किताब वो यहाँ पर यहाँ के आर्टिस्टों ने उसको फीचर फीचर लिखा पूरा और वो 15 अगस्त को सुबेरे 8 बजे ऑल इंडिया में बजा रेडियो तो ये रेडियो में। हाँ मैं यहाँ से गई तो मेरे साथ में वॉइस ऑफ अमेरिका वाले भी चलते रहे। अमेरिका में आई तो वहां पर मतलब इतने सारे प्रोग्राम हुए वहां पर इतने हिंदी मेरा खुद का रेडियो शो चलता था लर्न हिंदी एंड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और 2 साल तक वो चला।
1: जो अंजना तुमने जो हिंदी सॉन्ग्स के थ्रू जो तुमने काम किया ना अमेरिका में हिंदी सिखाने का वो एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उसमें पूरा व्याकरण सा गा जा रहा था
2: जी
1: जो काम
2: हाँ, और वो बहुत मुझे लगता है कि हिंदी गानों का जो आपका ज्ञान कोश बना वो शायद आकाशवाणी की बदौलत ही बना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे उसमें तो एक बूढ़ी औरत ने मुझे कहा कि अरे एक लड़की को देखा था उसको जंगल की आंख सुनाई दी। मैंने उसको ट्रांसलेशन में बताया कि जंगल नहीं है वो संदल संदल मीन्स खुशबू चंदन की बात है। तो अरे वो 10 मिनट का शो था लेकिन
1: समझाना पड़ेगा
0: समझाया मैंने।

0: अरे एक लड़की को देखा था, उसको जंगल की आंख सुनाई दी। मैंने उसको ट्रांसलेशन में बताया कि जंगल नहीं है वो, संदल। संदल मीन्स खुशबू, चंदन की बात है। तो अरे वो 10 मिनट का शो था, लेकिन
1: उसको तो समझाना पड़ेगा।
0: समझाया मैंने गानों में, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो उसने जियो जियो जियो बिटिया, तुमने मैं 20 साल से ये देखी, इसको लड़की को देखा, जंगल की आंख सुनाई दी इसको।
1: तो ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई है।
2: आकाशवाणी को सही तरह से सुना होता तो पता चलता कि उर्दू में संदल माने सैंडल, सैंडल
0: चंदन, सैंडलवुड मतलब चंदन। तो ऐसे इतने सारे एग्जांपल उसमें ला,
1: एक गाना ऐसे अक्सर होता है ना, जो हम चीजें जो आम आदमी जो आम जनता जो चीज सुनती है वो उसकी डेप्थ में तो जाती नहीं, शब्दों की भी डेप्थ में नहीं जाती है। वो तो जब तक वो नहीं जाएगी उसे कैसे समझ में आएगा।
0: आकाशवाणी ने जो काम किया, एक और मैं बताना चाहती हूँ कि आकाशवाणी में जो काम हुआ है उसने पूरी दुनिया में हमारे संगीत को जिंदा रखा है
2: जी,
0: हमारे गीतों को जिंदा रखा है।
2: और वो अलग अलग,
0: हाँ अलग अलग
2: गीत, उसमें संगीत की अलग अलग विधाओं को,
0: सारी विधाओं को जिंदा रखा है। और उसमें सबसे बढ़िया बात यह हुई कि जो 200 साल पहले यहाँ से लोगों को लेके गए, मजदूरों को, और उनके घरों में भी उनको मीनिंग नहीं मालूम है,
1: बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: मीनिंग नहीं मालूम है, लेकिन वो गाने लगाते हैं। तो मैंने ऐसे 100 गानों का ट्रांसलेशन किया,
2: वाह।
0: और वो उनको बताया कि ये गाना नहीं, एक बार तो हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, लेकिन बता रहे राजकुमार रिजवी का शो था, बोले अंजना जी आज तो आपको सबको ट्रांसलेशन करना है ऑनलाइन। अरे मैंने कहा स्टेज पे कैसे करेंगे तुम, बोले नहीं आपका सब लोग सुनते हैं रेडियो में, और वो प्रोग्राम चला।
1: नहीं बस अंजना मुझे यही कहना था कि इसके लिए बहुत सारे हम शुक्रगुजार हैं आकाशवाणी के लिए, क्योंकि मुझे तो बचपन में कभी मैंने आकाशवाणी में मैं गई थी बच्चों के प्रोग्राम में दिल्ली, हाँ। में दिल्ली आकाशवाणी में, उसके बाद में मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये अहमदाबाद गुजराती प्रदेश है, यहाँ पे मैं जानती नहीं थी कुछ। मैं 68 में शादी होके आ गई थी और पढ़ाई भी मैं अंग्रेजी में पहले करके आई थी, तो यहाँ पे जो दोबारा मैंने पढ़ाई शुरू की उसके साथ में मेरा हिन्दी के साथ रहा, और हिन्दी के बाद में मेरा जो ये गुजराती गुजरात विद्यापीठ साथ में जब मेरा जुड़ाव हुआ तब मेरा आकाशवाणी से एकदम जुड़ाव हो गया, उसके बाद में फिर कभी नहीं टूटा। ये बड़ी कृपा है ईश्वर की,
2: आगे भी नहीं टूटेगा। आकाशवाणी के साथ जो आपका संबंध है वो चलता रहेगा।
0: आकाशवाणी के कलाकार अमेरिका में बैठकर भी, आपने विजय का शो चलता है अभी, हाँ। शिकागो से, शिकागो भारत रेडियो,
1: लेकिन अभी भी सुनते हैं आकाशवाणी, जो सुनते हैं
2: इंटरनेट
1: अभी भी सुनते हैं।
2: और अब तो सच बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी भी अब हमारी मदद करती है कि जो विदेश में बैठे हैं, अब हर किसी के पास तो रेडियो सेट नहीं होता, तो आप मोबाइल ऐप
1: मोबाइल से सुनते हैं
2: या इंटरनेट के जरिए हम सब,
1: लेकिन वो गाने सुने जाते हैं, पुराने गाने
2: हमारे कार्यक्रम।
1: अच्छा मैंने एक वो काम किया था अपना इस पे, अपना IIM के साथ काम किया था, एक वो आता है प्रोग्राम आता था जिसमें दिल्ली से गाने सिलेक्ट होके आते थे और नीचे स्क्रिप्ट लिखी हुई आती थी दूरदर्शन,
0: गीतों भरी कहानी।
1: तो हाँ नहीं गीतों भरी कहानी तो नहीं उसे कहते थे, कुछ और प्रोग्राम था उसका, हाँ उसको मुझे करेक्शंस करने होते थे उसके अंदर से, तो वो मुझे आकाशवाणी दिल्ली से आया करते थे। तो ये एक बड़ा काम IIM का था वो कार्यक्रम, और मैं 7 साल उनके साथ।
2: तो देखिए आप दोनों शुरू से ही आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं, क्योंकि हम उस पीढ़ी के हैं कि जब रेडियो ही हुआ करता था एकमात्र मनोरंजन का साधन, और फिर
1: वही तो हम अपने आप को बड़ा अमीर समझे थे जब हमारे यहाँ रेडियो आया, तो पापा ने कहा कि रेडियो हमने, अरे भैया रेडियो आया,
2: रेडियो हमने अमीर ही बनाता है, आकाशवाणी ने अमीर ही बनाया है हमें, जो ज्ञान मिलता है, जो आप जैसे मूर्धन्य साहित्यकार, मूर्धन्य लेखक, वार्ताकार, आप डॉक्टर प्रणव भारती और डॉक्टर अंजना संधीर जैसे, और भी अलग अलग जो हमारे क्षेत्र है, अलग अलग केंद्रों के जो वार्ताकार आते हैं, कलाकार आते हैं, तो उनके माध्यम से हमारा ज्ञानवर्धन होता है, मनोरंजन होता है, ज्ञानवर्धन भी होता है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का और आप सरीखे अन्य साहित्यकारों का जुड़ाव आकाशवाणी के साथ आगामी 90 वर्ष तक भी बना रहेगा। हमारी पूरी आशा है और विश्वास है कि आप लोग हमेशा आते रहेंगे, और जिस प्रकार के आपने स्तरीय कार्यक्रम पहले बनाए हैं वो स्तर जारी रहेगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। और एक रेडियो प्रोड्यूसर होने के नाते बाकी मेरे साथियों की तरफ से भी मैं जानती हूँ कि हम उच्च स्तरीय कार्यक्रम ही प्रस्तुत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर अंजना संधीर, डॉक्टर प्रणव भारती,
0: बहुत बहुत मंगल कामनाएं,
1: और आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं भी और शुभाशीर्वाद भी, क्योंकि आप लोगों की पीढ़ी खूब आगे चलेगी तो ये आकाशवाणी इसी तरह से अपना झंडा उठाए खड़ी रहेगी, और हम लोग आते रहेंगे आप लोगों के पास में जब तक हम हैं इस दुनिया में। तो ईश्वर इतना सबको दे सहयोग, और मां वीणा पाने की कृपा सब पे बनी रहे, सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत नमन,
2: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पर यह परिचर्चा आपने सुनी। डॉक्टर प्रणव भारती और डॉक्टर अंजना संधीर से बातचीत कर रही थी दीपशिखा दुर्गापाल। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा रजू करी छे कार्यक्रम हिंदी फिल्म गीतो। કાર્યક્રમની પ્રથમ પ્રસ્તુતિમાં સાંભળીએ કિશોર કુમાર અને આશા ભોસલેના યુગલસ્વરમાં ફિલ્મ તીન દેવિયામાંથી લીધેલું આ ગીત। સંગીત આપ્યું છે SD બર્મને અને શબ્દરચના મજરૂ સુલતાનપુરીની।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी छे, आकाशवाणी उजवी रही छे तेनी प्रसारण यात्राना गौरवमय 90 वर्ष। पेढ़ीओ बदलाए, समय बदलायो, पण हमेशा आपनी साथे रही आकाशवाणी। आकाशवाणी 90 वर्षे पण एटली ज ताजगीनो अनुभव करावती आपनी आकाशवाणी। 90 वर्ष, जी हां दोस्तों, श्रोताओना हृदयमां पोतानी प्रसारण यात्राना सफल 90 वर्ष पूर्ण करशे आकाशवाणी। तारीख 8 जून 1936 थी सतत आपनी सेवामां आकाशवाणी। एक मेघनो 90 वर्ष नो

0: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार।

जय भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को और फाजी भाइयों का ध्वनि का नमस्कार। दोस्तों, ऐसी गर्मी में आशा है कि आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते होंगे, हाइड्रेटेड रहते होंगे और साथ ही में संगीत का भी लुत्फ़ उठाते होंगे। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हम ऐसे चुंद नगमे लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जिसमें हिंदी सिने जगत के ऐसे गाने पेश करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ हिंदी भाषा का प्रयोग ना किया हो बल्कि प्रादेशिक भाषाओं का भी प्रयोग करके बहुत सुरीले गाने हमारे गीतकारों ने और संगीतकारों ने जो बनाए हैं वो आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। सिर्फ प्रादेशिक भाषा नहीं, कभी कभी अंग्रेजी भाषाओं का भी प्रयोग करके ऐसे गाने बनाए जो हमारे कानों तक पहुंचते पहुंचते हमारे रूह तक समा चुके हैं। तो ऐसे खूबसूरत कर्णप्रिय गाने आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं गंगा जमुना फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में। गीत लिखा है शकील बदायनी ने और संगीत दिया है नौशाद अली ने।

दोस्तों, इस गाने में मोहम्मद रफ़ी सी और साथियों के स्वर में सिर्फ हिंदी नहीं, भोजपुरी का लहजा कितना सुंदर हमको सुनने को मिला। ऐसा ही पंजाब का लहजा लेके प्रस्तुत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना अर्पण फिल्म से। गीत गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

दोस्तों, अब चलते हैं राजस्थान की मरुभूमि में और लुफ्त उठाते हैं उस संगीत का। गीत लेके आए हैं लम्हे फिल्म से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत शिवहरी का है और स्वर दिया है लता मंगेशकर, इलारून और साथियों ने।

दोस्तों अब चलते हैं कश्मीर की तरफ। वहाँ की वादियों में इतना सुकून होता है और इतना आनंद मिलता है जहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता है। ऐसा ही गाना मिशन कश्मीर का लेके आए हैं। गीतकार है राहत इंदौरी, संगीतकार है शंकर एहसान लॉय और गीत को गाया है शंकर महादेवन, जसबिंदर नरुला और सुनिधि चौहान ने।

अब बारी है हमारे गुजरात की। ऐसा ही एक सुरीला गाना, शायद आप जान ही गए होंगे, हम दिल दे चुके सनम का। सही है, महबूब का लिखा हुआ, इस्माइल दरबार का संगीतबद्ध किया हुआ, करसन सागठिया, कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौड़ की और साथियों की आवाजों में ये सुंदर गीत।

दोस्तों, आशा है कि आपको गाने पसंद आ रहे होंगे। जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने बोला था कि अलग अलग प्रादेशिक भाषाओं के साथ साथ हिंदी सिने जगत में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी कर करके बहुत सारे गाने हमारे गीतकार और संगीतकार ने दिए हैं। उसमें से एक बहुत बहुप्रचलित और कर्णप्रिय गाना है एक दूजे के लिए का। समझ ही गए होंगे कौन सा गाना है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और स्वर दिया है लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम ने।

इसी फिल्म का दूसरा गाना मैं आपको थोड़ी देर के बाद सुनाती हूँ, पर उससे पहले अमर अकबर एंड थनी, ये फिल्म में भी बहुत सुंदर और सुरीला गाना गाया है किशोर कुमार, और शब्द जो अंग्रेजी में बोले गए थे वो थे अमिताभ बच्चन जी ने बोले थे, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: नंबर 420.
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस.
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ.
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री.

0: कोतवाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट,
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
3: सही में दोस्तों, सीधे सीधे अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग करके सीधा सीधा गाना बनाना बहुत ही आसान बात है, पर ऐसे ट्रिकी वर्ड्स को यूज़ करके गाने को और मधुर बनाना और रमूज बनाना ये हमारे सिने जगत के गीतकार ही कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक दूजे के लिए फिल्म का ये दो गाना। ये गाना भी लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ही। आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम।

सही में हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हम आकाशवाणी से आप सबको बहुत बहुत प्यार भेजते हुए ये कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि घड़ी की टिक टिक टिक टिक सुनाई दे रही है। ये कार्यक्रम यहीं पे संपन्न करते हैं। जय जवान।

0: फौजी भाइयों का विशेष कार्यक्रम जय भारती आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भुज से। ठीक 2:15 पर दोपहर समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित

0: मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोप

0: आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ. मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि

0: हे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 96.7 FM પર વિવિધ ભારતીની વિજ્ઞાપન પ્રસારણ સેવાનું આ અમદાવાદ કેન્દ્ર છે. શ્રોતા મિત્રો, સાંજના 5 થયા છે. રજૂ કરીએ છીએ હિન્દી ફિલ્મ ગીતોનો કાર્યક્રમ સરગમ. કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં સાંભળીએ દિલ હૈ કે માનતા નહીં આ ફિલ્મનું આ ગીત અનુરાધા પોંડવાલ અને કુમાર સાનુના યુગલ સ્વરમાં.
1: राज्य खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं. सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे. दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया. और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के दूसरे चरण के लिए 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी का स्वागत किया है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी. नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया. सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है. न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है. याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया. इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है. जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है. सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन

घर आशय फिल्मनु नाम, संगीत आरडी बर्मननु, गीत गुलजार, गायक कलाकार किशोर कुमार अने लता मंगेशकर।

0: नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। सिंधी ख़बरुनि सां गॾु मां दीपा गुरनानी। अवल अहम ख़बरूं। काबीना अॼु अवामी विर्छ सिरिश्ते जे तहत राशन आमदरफ़त ऐं इंतिज़ामी मददगार योजना ऐं सार्थक PDS खे जारी रखण जी मंज़ूरी ॾिनी। CBI नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में 3 ॿियनि माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो। सुप्रीम कोर्ट 3 ॿोलियुनि जो अभ्यास लाज़मी करण वारी CBSE नीतीअ खे ललकारींदड़ दरख़्वास्त ते वीचार कंदी। भारत ऐं कैनेडा बाहिमी वापार खे 2030 ताईं 50 अरब अमेरिकी डॉलर ताईं वधाइण जे गॾियल लक्ष्य जी तस्दीक कई। ऐं IPL क्रिकेट में अॼु शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइज़र्स हैदराबाद ऐं राजस्थान रॉयल्स जो मुक़ाबिलो थींदो। काबीना अॼु अवामी विर्छ सिरिश्ते जे तहत राशन आमदरफ़त ऐं इंतिज़ामी मददगार योजना ऐं सार्थक PDS खे जारी रखण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। इन जे लाइ सरकार पारां 25,530 करोड़ रुपियनि जी विर्छ कई वई आहे। नई दिल्लीअ में मीडिया खे ॼाण ॾींदे सूचना ऐं नशरियात मंत्री अश्वनी वैष्णव चयो त इहा योजना राज्य एजेंसियुनि खे अंदरूनी राज्य खाद खोराक आमदरफ़त में मदद फ़राहम कंदी, मुनासिब अघनि वारियुनि दुकाननि खे मदद कंदी ऐं अवामी विर्छ सिरिश्ते जे जदीदीकरण में मदद कंदी। श्री वैष्णव चयो,
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह काबीना द्वारा सार्थक PDS योजना जे बे तबके जे लाइ 25,500 करोड़ रुपियनि खां बि वधीक जी रक़म खे मंज़ूरी ॾिनी आहे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह चयो त सरकार ग़रीबत घटाइण वारियुनि योजनाउनि खे वधीक साफ़ ऐं सहजो बणाइण जे लाइ हिन में तकनीक खे दाख़िल करे रही आहे। सुप्रीम कोर्ट चूंड कमीशन पारां कयल वोटर फहरसतुनि जी ख़ासि गहरी नज़रसानी SIR अमल जी दुरुस्तीअ खे बरक़रार रखियो आहे। सुप्रीम कोर्ट चयो त SIR अमल आज़ाद ऐं बेरियाव चूंडुनि जे जोड़जकी ज़रूरतुनि खे अॻियां वधाए थो। अदालत फ़ैसिलो ॿुधायो त चूंड कमीशन अवाम जी नुमाइंदगी एक्ट 1950 जे आर्टिकल 324 ऐं उन जे तहत ठाहियल ज़ाब्तनि जे तहत SIR कराइण जी ताक़त रखे थी। मुख्य जज सूर्यकांत ऐं जज जय माल्या बागचीअ जी हिकु बेंच इन रिट दरख़्वास्तुनि ते फ़ैसिलो ॿुधायो, जंहिं में गुज़िरियल साल जून महीने में चूंड कमीशन द्वारा बिहार में SIR मुंतज़िम करण जे लाइ जारी पदरनामे खे ललकार ॾिनी वई हुई। भारतीय जनता पार्टीअ SIR खे मुकमल जोड़जकी करार ॾियण जे सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले जो स्वागत कयो आहे। नई दिल्लीअ में प्रेस रिपोर्टरनि खे ख़िताब कंदे पार्टी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदीअ चयो त
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: CBI नीट UG 2026 इम्तिहान पेपर लीक मामले में 2 ॿियनि ॾोहारियुनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। CBI इन मामले में हेल ताईं दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातुर ऐं अहिल्या नगर

0: खां कुल 13 ॾोहारियुनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। नीट सवाली पेपर लीक मामले में लातुर में रहंदड़ डॉक्टर मनोज शिशुरे खे बि गिरफ़्तार कयो वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट दर्जे नाए जे शागिर्दनि लाइ घटि में घटि 2 भारतीय ॿोलियुनि समेत 3 ॿोलियुनि जो अभ्यास लाज़मी करण बाबति CBSE बोर्ड जी नीतीअ खे ललकारींदड़ दरख़्वास्त ते वीचार कंदी। सुप्रीम कोर्ट अॼु मर्कज़ी सरकार, बोर्ड ऐं राष्ट्र तहलीम खोजना ऐं तरबियत काउंसिल खे नोटिस जारी करे 2 हफ़्तनि अंदरि जवाब तलब कयो आहे। CBSE 1 जुलाई खां वठी दर्जे नाए जे शागिर्दनि लाइ घटि में घटि 2 भारतीय ॿोलियुनि समेत 3 ॿोलियुनि जो अभ्यास लाज़मी करण बाबति सर्क्यूलर जारी कयो हो। ही ख़बरूं तव्हां आकाशवाणीअ तां ॿुधी रहिया आहियो। ही ख़बरूं तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल एयर न्यूज़ गुजरात ते ॿुधी सघो था। वधीक ख़बरुनि जे लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था। वणज ऐं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कैनेडा जी पंहिंजी यात्रा जे ॿिए ॾींहुं टोरेंटो में कैनेडा जे बर्ख अॻवाननि ऐं इदारती सीड़पकारनि सां गॾु आला सतही बैठक कई। वणज ऐं उद्योग मंत्रीअ चयो त इन बैठक जो मक़सदु बाहिमी सहकार खे वधीक मज़बूत बणाइण ऐं आर्थिक खितनि में सीड़प ऐं तकनीकी भाङे भाईवारीअ खे औॼ ॾियण आहे। वज़रात ॿुधायो त ॿिन्ही मुल्कनि आपसी वापार खे 2030 ताईं 50 अरब डॉलर ताईं वधाइण जो लक्ष्य रखण जी तस्दीक कई। भारत बिरादरीअ खे ख़िताब कंदे श्री गोयल भारत कैनेडा वापार खे मज़बूत करण में कैनेडा में रहंदड़ भारत प्रवासियुनि जी अहम भूमिका ते रोशनी विधी।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: उप राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन अॻूणे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूअ जी वर्सीअ ते हुन खे श्रद्धांजलि अर्पण कई आहे। हू भारत जो पहिरियों प्रधानमंत्री हो जंहिं प्रधानमंत्रीअ जे रूप में 15 अगस्त 1947 खां 27 मई 1964 ताईं पंहिंजो कार्य अर्सो मुकमल कयो। हुन जो चालाणो 27 मई 1964 ते 74 वरियनि जी उमिरि में थियो हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में वधंदड़ गर्मी पद जे विच में माण्हुनि खे एहतियात रखण जी सलाह ॾिनी आहे। आबुआ महकमे दिल्लीअ जे कुझु हिसनि में अॼु लूअ जो चिताव जारी कयो आहे। शहर में वधि गर्मी पद 43 खां 45 डिग्री सेल्सियस जे विच में रहण जा इम्कान आहिनि। राजस्थान में ज़बरदस्त गर्मीअ जे विच में अॼु राज्य जे 5 ज़िलनि में लूअ जी अॻकथी कई वई आहे। जोधपुर, बीकानेर ऐं कोटा डिवीज़न जे कुझु हिसनि खां गॾोगॾु शेखावटी खिते में वधि गर्मीपद 46 डिग्री सेल्सियस खां मथे ताईं पहुचण जा इम्कान आहिनि। हिकु रिपोर्ट।
2: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है।
0: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स अज 142 पॉइंटू घटी करे 75,888 ते बंद थियो। इहो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो निफ्टी भी 7 पॉइंटू घटिजी 23,907 ते बंदि थियो। ऐं IPL क्रिकेट में अॼु मोहालीअ जे न्यू चंडीगढ़ में सनराइज़र्स हैदराबाद ऐं राजस्थान रॉयल जे विच में एलिमिनेटर मैच खेॾी वेंदी। मैच शाम 7:30 बजे खां शुरू थींदी। सोभ्यारी टीम जुमे ॾींहुं 2 क्वालीफायर में गुजरात टाइटन्स सां खेॾंदी। ॼातल सुञातल निशानेबाज ऐं रांदि रुंद अख़्तियारीअ जे राजा रणधीर सिंह जो अॼु 79 वरियनि जी उमिरि में चालाणो थियो आहे। एशियाई रांदियुनि में सोनो तमको खटंदड़ अॻूणे अर्जुन पुरस्कार सोभ्यारे श्री सिंह पंहिंजे शानदार कैरियर में 5 भेरा ओलंपिक में भारत जो एवज़ी पिणो कयो।

0: ગુજરાતી ગીતો આપણે સાંભળ્યા. પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્રથી કરવામાં આવ્યું. થોડી ક્ષણો બાદ દિલ્હીથી પ્રસારિત સમાચાર સંધ્યા, ન્યૂઝ એટ નાઇન અને સ્પોટલાઇન આપ સાંભળી શકશો.
1: केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी. योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे. मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया.
2: उच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा. कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है. असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित. यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना. भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता. और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा.

0: अब समाचार विस्तार से।
1: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता
2: सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
3: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
5: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर

कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Center approves extension of Sarthak PDS scheme to modernize public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2020.

0: प्रभावित करता है। आप सब जानते हैं कि आज हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय हैं, उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: सो लक्ष्मी, हियर वी आर हियरिंग द मिनिस्टर यू नो टॉक अबाउट लाइक प्रेसिंग अ रिफ्रेश बटन, इंक्रीजिंग रिमुनरेशन, मेकिंग श्योर दैट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, एंड बेसिकली ऑल द एम्स टू सी दैट द मनी गोज टू द राइट पीपल। इन टर्म्स ऑफ द स्केल, financial and logistical, do you think that somewhere sustainability is very, very critical because it affects the last mile, you know, the common man?
2: The scale is huge, and India is the only country in the world where such a large scale welfare scheme is being implemented, and annually 500 lakh metric tons of food grains are transported across the country. And this, you know, moves from center to state and within the state to districts. And there are nearly 5,35,000 fair price shops, which we call ration shops, through which the food grains are distributed to 80 crore people. It's not a small number. And managing such a big capacity requires technology, and also people who are operating these fair price shops, they also need some kind of margin or remuneration for them to sustain, considering the kind of inflation we have. So that's the idea, like the support that government gives in assisting these dealers to operate these ration shops efficiently. If they are better remunerated, they will function efficiently. That's been the long-standing demand, that their margins are low and they want it, and this scheme helps them some increase in the remuneration for them. And apart from that, the scheme also talks about technology that is there, and also fair price shop, that support is there. And especially the grievances, you know, the grievances, AI grievances, if anyone has issues regarding PDS distribution or anything, they not got any, their quota of, everything can be addressed. And if it is AI driven, the efficiency of addressing those issues will be faster and smarter.
1: Right. In fact, you're on point absolutely to talk about grievance redressal. The minister has also spoken about this and has also mentioned what is going to be the financial gain due to the use of technology, which now the government is looking forward to reaping. Let's listen to that.
0: पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजंस का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपरली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-50%। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग हो, और कार्बन एमिशंस बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशंस विल 35%. ये सारे इसमें बेनिफिट होंगे।
1: So Lakshmi, it's a huge program, and yes, of course, equity and inclusivity are the key pillars on which this is based, and food security, of course. But in terms of sustainability, how do you see that we can make this more sustainable? Because it was actually a bridge reform that was brought in, but it is still continuing. So do you see sustainability as something that we really need to consider long term?
2: Scheme has been implemented, you know, for so many years. Food Security Act was 2013. It's a act, illegal entitlement to subsidized food grains was given to 2/3 of India's population. From then, you know, from 1 rupee to 2 rupee to now, you know, per kg to free distribution of grains, we have traveled a long journey. In that journey, there have been many reforms from time to time that has been taken,

0: सी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए।

कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी पद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

0: आसमां को चूमे हम जब चले तू।
1: सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं न कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बीआर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह,

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला तुम गाने में हमको हराया, हाँ तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेंगे?
2: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी? आमा बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो एक चौकरा एक चौकरी गार्डन में घूमता है तो फिर कबाब में अड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है, ये कसर का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो यो यो।
0: सन 1965 फिल्म

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

0: एक दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी, तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।
1: खामोशियां ये तन

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी।

1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की ये फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा। सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए। सन 1976 नागिन। सन 1979 जानी दुश्मन। और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया, रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थीं। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था।

पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS। ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मालिया बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनैतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेष

0: लेकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुभाष मेहता, यस तुन्ना शोभा मोदी,
1: ओ कौन मुनीश्वर,
0: हसमुख भावसार,
2: यामिनी
0: गोपी देसाई,
3: उपेक्षिता स्त्री नो दुख समझो छो अंशुमान,
0: हर्षक ठक्कर।
4: नाटक मेरी रोज ना लेखक विभूत शाह, निर्माण सहाय गोपाल मुदलियार, रजुवात रमेश भट्ट।

0: हेलो हेलो हेडक्वार्टर, हेलो हेडक्वार्टर, कैप्टन नीलेश रिपोर्टिंग फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम सेक्टर। आज -35 डिग्री, शून्य से नीचे पारा है सर। सर हम 10 घंटे से डटकर मुकाबला करते हैं सर। 3 जवानों का कुछ पता नहीं है। सर्च ऑपरेशन 14 घंटे से रुका हुआ है। जी सर, यस सर, 2 जवान शहीद हुए हैं। अभी तक कॉफिन आया नहीं है सर, शाम तक आ सकता है। सर गोला बारूद की वेट कर रहे हैं, अभी तक पहुंचा नहीं। हेलीकॉप्टर से शाम तक आ जाए तो। जी जी, कन्फर्म करके बताता हूँ सर। ओवर सर।
1: कोई है नायक गिरी?
2: यस सर, रिपोर्टिंग।
0: लास्ट नायक, कितना स्टॉक है?
2: कल शाम तक चल सकता है। सप्लाई 1 हफ्ते से नहीं आई, बूट की सप्लाई भी नहीं आई। पोजीशन क्रिटिकल, फटे जूते से जवान खराब वेदर में फ्रंट पोजीशन पर दौड़ते हैं सर। 3रा रिमाइंडर परसों भेजा है। ओवर।
0: कल रात वायरलेस पर कौन बैठा था? सुनो, 65 फील्ड रेजिमेंट के 7 जवान एवलांच बर्फ के तूफान के चलते लापता है, उनकी कोई खबर?
2: नो सर, सर्च ऑपरेशन चालू है, 2-3 दिन और लग सकता है जी, बहुत बर्फबारी हुई है। अरे हाँ, हेडक्वार्टर को रिमाइंडर भेजना है सर, राशन की डिलीवरी जल्द से जल्द हो जाए।
0: हाँ,
2: तो
0: हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और तुम जाओ चौकी नंबर 11 को संभालो और हवालदार को यहां बुलाओ।
2: यस सर।
3: रिपोर्टिंग सर, 8 घंटे बीत चुके हैं, सरहद के पास गोलीबारी बंद है, बर्फ के तूफान से काफी नुकसान हो रहा है, रम की डिलीवरी को रिमाइंड भी करवाना है सर।
0: अरे शिंदे, पीने वाले क्या निशाना लगाएंगे, छोड़िए सब। अरे हाँ हाँ हाँ, तेरी तो छुट्टी मंजूर हुई है ना, कब जा रहा है?
3: कल शाम को 4 बजे, कैंप से सुबह 7 बजे पैदल निकलूंगा तो समय से पहुंच जाऊंगा। और सर, आपकी सब पार्टी में वेट कर रहे हैं, प्लीज।
0: अरे मैं तो शराब पीता ही नहीं, तुम्हें तो मालूम तो है मैं गुजरात से हूँ। सुनो, एक बार मैं जर्मनी ट्रेनिंग में गया था, शाम को स्टेज पर से सबकी पहचान देने के वक्त किसी ने मेरी पहचान देते हुए कहा कि देखो जी, ये महाशय उस देश में से आते हैं जहाँ क्या खाना और क्या पीना वो वे खुद तय नहीं करते हैं, उनकी सरकार तय करती है, और वो भी कानून बनाकर। मेरी तो हालत खराब हो गई। सबको ताजुब हुआ कि ये कैसी सरकार है जो नागरिक को खाने पीने की स्वतंत्रता नहीं देकर सब वो तय करती है।
3: क्या बात करते हो साहब, साहब यहां तो जरूरत से पीते हैं हम, और आज का टेम्परेचर आपने सुना, -32 है। सर्दी से निमोनिया होने में देर नहीं लगती, और ये सब लग्जरी चीजें आप अपने गुजरात में ही छोड़ दीजिए, यहां तो जरूरत से पीना पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा, तुम शुरू करो, मैं एक वायरलेस मैसेज भेजने के बाद शामिल हो जाता हूँ। अरे हाँ सुनो सुनो, आज मैं भी तुम्हारी खुशी में शामिल रहूंगा, लेकिन हाँ मेरे लिए वो छोटा सा बनाना, वो तुम्हारे जैसा पतियाला नहीं। हाँ देखो देखो, हमें आदत नहीं है, ये इतनी ठंड है, आप लोग ये बोल रहे हो तो पहली बार, सच कहूँ तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता।
2: सर क्या बात है, तब तो खुशी की बाढ़ आएगी। अरे सुनो, कैप्टन साहब आज पार्टी में शामिल होंगे।

0: सही पकड़े हैं।
1: हम उनसे क्या कहेंगे पता है?
0: क्या कहेंगे?
2: हम उनसे कहेंगे जाने जा, हम उनसे कहेंगे जाने जा, हम उनसे कहेंगे जाने जा।
1: अरे क्या कहेंगे,
0: क्या कहेंगे? अरे लाए हैं बड़ी मुश्किल से संभाल के लाए हैं,
1: सुंदरियों को छोड़कर हम पहुँचे हैं, पहुँचे हैं।
0: अरे लेके आए हैं, लेके आए हैं, बचा के लेके आए हैं।
1: आए तौबा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या लाए हो?
0: तो सुनो सुनो मेरी जाने जा, अरे सुनो सुनो मेरी जाने जा,
2: पूछती हो क्या लाए हो, पूछती हो क्या लाए हो।
0: तो सुनो, हम दिल अपना बचा के,
2: दिल अपना बचा के।

0: दिनों की छुट्टी है और अरे भाई सुनो सुनो सुनो।
1: हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए सुनाइए, फरमाइए।
0: मेरा किस्सा सुनो।
1: हाँ,
0: तब हम बारामुल्ला की पठान चौकी पे थे। सरहद पर तनाव था, लश्कर की मूवमेंट काफी थी, कभी भी युद्ध का बिगुल बज सकता था। हम सभी बेचैनी से लड़ने को तैयार थे,
1: बराबर तैयार थे। लेकिन तब तब एक शामत आई, वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। छुट्टी पे गए हुए सबको वापस फौज के मोर्चे पर हाजिर होने का कमांडर साहब ने फरमान जारी किया। मैंने मिला हुआ तार पढ़ा और क्या लिखा था पता है? लिखा था कि बहन की शादी 6 अक्टूबर को तय हुई है, जल्दी घर पे आ जाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा, तेरी मां ने कसम भेजी है, जल्दी घर आ जाओ। बोलो, मेरी तो मति मार गई। साहब के पास जाके मैंने हाथ जोड़ा, साहब साहब मेरी बहन की शादी तय हुई है, 6 अक्टूबर को शादी है, ना मत कहना प्लीज, ना मत कहना, मैं हाथ जोड़ता हूं।
0: साहब लोग बड़े चतुर होते, कभी ना नहीं कहते, लेकिन ना का बाप बोलते हैं। वो हंसते हंसते बोले, अरे सुनो, एक काम करो, मैं जो काम बताऊं वो करके आ जाओ तो तुम्हारी छुट्टी पक्की। बोलो, करोगे?
1: हाँ सर करूंगा, आप जल्दी बताइए, मैं जरूर काम करूंगा।
0: तुम्हें मालूम है सरहद पर तनाव है, सबकी छुट्टियां रद्द कर दी है और सबको ड्यूटी पर वापस बुलाया है। ये सब के बावजूद मैं जोखिम उठाता हूं, एक काम करके तुम आओ तो तुम्हारी छुट्टी मंजूर।
1: हाँ सर, आप जल्दी काम बताइए, मैं करूंगा।
0: शाम होने से पहले दुश्मन की सरहद में घुस के उनकी एक पैटन टैंक लेकर आओ, बस इतना करो।
1: और सुनो यारो, शाम होते होते दुश्मन की एक टैंक मैंने अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर के सामने लाके खड़ी कर दी।

0: अरे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई साहब की तो, और साहब चकरा गए, बड़ी मुश्किल से बोल पाए। बोलो
1: बहादुर, ये कारनामा किया कैसे, जल्दी बताओ।
0: मैंने कहा साहब इसी तरह हम अपनी भारतीय टैंक दुश्मन के जवानों को भी दे देते हैं, और ये पुराना रिश्ता है। और साहब आपको मालूम नहीं होगा लेकिन शाम को सरहद पर महफिल और मुशायरा भी होता है। अरे कभी कभी तो हम मिठाइयां भी बांट के खाते हैं, सरहद पर सभी त्योहार भी साथ में मनाते हैं। लेकिन जब युद्ध होता है,
1: युद्ध के दौरान सब बंद हो जाता है और हम दुश्मन फिर से दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन का पाठ अदा करते हैं और मरते हैं, सदियों से मरते हैं। दुनिया का यही रिवाज है, कब दोस्त बनना है और कब दुश्मन बनना है वो हम लोग तय नहीं करते, वो हमारे ऊपर वाले नेता लोग तय करते हैं।

0: सूबेदार मेजर चक्रवर्ती, कोई हताहत जान हानि का पूरा रिपोर्ट दे।
1: सर, एक शहीद और दो क्रिटिकल इंजर्ड हेलीकॉप्टर लेके अभी अभी आर्मी हॉस्पिटल में गए। दो जवानों को माइनर इंजरी, पांव में गोली लगी है लेकिन सीरियस नहीं है।
0: बदलना चाहिए, कुछ तो बदलना चाहिए, यहां भी और वहां भी। चक्रवर्ती, ये बता, हम लोग क्यों लड़ते हैं? हम क्यों नफरत करते हैं उनसे जिसने मेरा या तुम्हारा कोई निजी नुकसान कभी भी नहीं किया है, जिसकी मैंने या तुमने सूरत तक नहीं देखी? फिर भी हम क्यों लड़ते हैं, क्यों मरते हैं?
1: साहब, हम यहां अपनी मर्जी से नहीं लड़ते हैं। लड़ाने वाला तो बड़ी ऑफिस में राजधानी के एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं। कमांडो, सिक्योरिटी, सुरक्षा कवच है इनके पास। लड़ाते वो है, मालिक तय करता है कुत्ता किसे काटे। वो तो हुक्म देने वालों की चौकी करता है। अरे छोड़ो साहब, अब तो 2 साल बचे हैं रिटायर होने में। यह अजीब सिस्टम है, परंपरा है, कोई नहीं बदल सकता। सदियों से चली आ रही है, दुनिया भर में लश्कर का हाल यही है। समझ तो बहुत रहे हैं साहब, दुनिया भर में सिस्टम है, सोच व्यवस्था कोई नहीं बदल सकता। मेरा दुश्मन मैं तय नहीं करता हूं। राजधानी में सुरक्षित बैठे सर्वसत्ताधीश करते हैं। मैं वो इंसान को दुश्मन बनाता हूं जिसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। वो भी किसी का बेटा, शौहर, पति, इंसान है। एक सायरन बजने से, युद्ध घोषणा से हम एक दूसरों को मारने पर उतारू हो जाते हैं। मैंने बहन की राखी उस हाथ में देखी थी जिसको मैंने एक दिन कॉफिन में रोते रोते तिरंगा लपेटे रखी थी।
0: यहां परंपरा बन चुकी है, शहीदों की परंपरा का नाम दिया है उसे। जो हमें लड़ाते हैं उन नेताओं के बेटों को कभी कॉफिन में किसी ने देखा? आज तक तो नहीं देखा।

0: हेलो, कौन बोले जा?
1: सुनो, हम दिल्ली से आए हैं। कैंप मिलिट्री गैरिसन इंजीनियर की ऑफिस से बोल रहे हैं। सुनो,
0: जी जी जी बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ।
1: हम 5 बजे से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं, पूरा 21 घंटे से। आपका एड्रेस और टेलीफोन नंबर हमें विनोद भाई सोनी से अभी मिला है। नहीं, वो हमारे पास नहीं है। देखो, आप सोसाइटी के बाहर निकलकर कोई मेन सड़क पर आ जाओ, आपसे मिलना जरूरी है। क्या कहा? पालड़ी अंजलि सिनेमा? हम यहां एलिस ब्रिज वीएस हॉस्पिटल से
0: सीधा रास्ता पकड़ो और इसी सड़क पर अंजलि चौराहे पर मैं खड़ा हूँ। हाँ, निकलता हूँ जी। हाँ, घर पे सब सो रहे हैं। हाँ जी, अभी किसी को नहीं बताऊंगा।
2: कौन? अरे जगदीश, अड़ती रात रे। अरे पर अत्यारे कौन मळवा आवे? अरे अत्यारे मने उठाड़वानी सी जरूरत थी? जेने मळवो होय तो ऑफिस आवे।
0: बापूजी, तेमनी वात तो सांभळो। अहमदाबाद में पहली बार आ लोको आव्या छे। क्यारना कलाकोथी आपणुं ज घर शोधता हता। आपणा विनोद भाई सोनी पासेथी टेलिफोन सरनामुं लईने।
2: हा सारू, बोलाओ।
1: नमस्कार बापूजी, आपको एक समाचार देना है।
2: क्या फिर पाकिस्तान ने नापाक हरकत शुरू की?
1: बाबूजी, हम कैप्टन नीलेश को लाए हैं।
2: हैं? क्या मतलब? नीलेश को लाए हैं? क्या छे, क्या छे? अरे कहाँ है नीलेश? सुना नहीं, कहाँ है वो?
0: जी, कॉफिन में लाए हैं।
2: क्या कहा?
1: जी, पूरे मान सम्मान से, तिरंगे में, शहीदोचित आदर से।
2: एक मिनट, सांभो, सुनो, रोना धोना बंद करो। मेरा बेटा मरा नहीं, शहीद हुआ है, देश के लिए प्राण समर्पण किया है। नसीब वाला है, 24 साल का मेरा बेटा कैप्टन नीलेश ने हमारे खानदान का नाम रोशन किया है, हमारे पुरखों की 100 पीढ़ियों का नाम रोशन किया है, हमारे खानदान का इतिहास आज सुवर्णमय हुआ है। भारत माँ का लाल सियाचिन मोर्चे से आया है। सुनो, हम सब घर, मोहल्ला, शहर, प्रदेश और भारत देश आज गौरवान्वित हुआ है। याद रहे, सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरा कैप्टन नीलेश कुमार आज से देश का हुआ है, शहीद हुआ है।

उसको विरोचित विदाई दें। राष्ट्र की एकता, अखंडता और हमारी रक्षा के लिए शहीद हुआ है, मुझे अभिमान है। ऐसे बेटे घर घर में हो, आज शहीदोत्सव मनाएं। आज भारत माता का बेटा शहीद हुआ है।

हम मेरे आएंगे चॉकलेट खूब लाएंगे। घर अभी वो आएंगे, मैं उनसे खेलूं।

शफक कहते हैं किरणों को रेस और धनुक रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल।